तुलसिया बर रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। राम जी ने दुनिया में दुख सुख बांटे, बलिहारी है।